गान मिलांती, गान मिलांती। सुनछेन नमस्कार कोलकाता, नमस्कार कोलकाता 107

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

नमस्कार, सुप्रभात। आपने ट्यून किया है 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक का स्टूडियो की घड़ी बता रही है। समय हो रहा है 10:08:20। मैं देवजानी आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। हमारे यूजुअल सेगमेंट्स, बेहतरीन खूबसूरत नगमे और कुछ बातें आपके और हमारे दरमियान रहेंगी, और ऐसे ही कुछ लम्हों को हम जिएंगे जिन लम्हों के लिए इंसान इंतजार करता है, वो लम्हे जो इंसान के दिल और दिमाग को सुकून पहुंचा कर जाती है। सबसे पहले बता दूं आज का मौसम का हाल।

एक विशेष मौसम बुलेटिन के मुताबिक आज सुबह लगभग 7 बजे से अगले 2-3 घंटों के दौरान अलीपुरद्वार जिले के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे के गरज चमक वाले बादल सक्रिय हो सकते हैं। इसके साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। इसलिए अनुरोध है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहे, खुले मैदानों, जलाशयों तथा पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और मौसम विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। तो ये था स्पेशल अपडेट मौसम के बारे में।

हमारे यूजुअल सेगमेंट्स में आज भी आज की बातें, कुछ नुस्खे और साथ ही साथ हमारे शहर में, हमारे आसपास इर्द गिर्द क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जिक्र। एक और गीत और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते रहिए हमारे साथ, बने रहिए।

चुटकी नुस्खे। वैसे तो कार्यक्रम की शुरुआत मौसम के बाद दिन के बारे में बातें करते हुए करनी चाहिए, पर मैंने एक चुटकी नुस्खे को इसलिए चुना, इस वक्त 10:15 अभी हो रहे हैं कार्यक्रम का, बस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और हमने थोड़ा सा ही सफ़र तय किया है, वो इसलिए क्योंकि ये मौसम बड़ा अजीब है, अटपटा सा है। यूं तो शहर कोलकाता में या फिर हमारे राज्य में वेस्ट बंगाल में 10 जून ऑफिशियल डेट है मानसून के आगमन का। 8 जून केरला में मानसून का आगाज हो जाता है और 10 जून तक कोलकाता में या फिर वेस्ट बंगाल में बारिश का समा बंध जाता है। पर इस बार जो पिछले 2 दिन से या फिर कल से जो बारिश का समा बंधता हुआ नजर आ रहा है, ये तो मौसम विभाग बता पाएगा कि ये मानसून का आगाज है या फिर यूं ही कभी कभी जो हमें बारिश की छींटे नसीब हो जाती हैं वैसा ही कुछ है। पर ये तो तय है कि ये जो मौसम का बदलाव है यानी चेंज ऑफ सीजन, इस दौरान सर्दी खांसी और कई सारी छोटी मोटी बीमारियां, वायरल बीमारियां हो जाती हैं और इनसे बचने के उपाय हम घरेलू उपायों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर ज़रूरी है कि इस समय के दौरान इन उपायों का एक बार फिर से दिमाग में उनका एक बार ब्रश अप हो जाए।

0: बदलते मौसम में संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, स्वच्छता, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। साथ ही दादी नानी के कुछ पारंपरिक घरेलू नुस्खे भी सर्दी खांसी, गले की खराश जैसी छोटी मोटी परेशानियों में राहत पहुंचाने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि जब कोई समस्या गंभीर हो जाए या लंबे समय तक बनी रहे तो जरूर जरूर डॉक्टर की सलाह लें। खास करके उन लोगों को इस समय बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है जिन्हें किसी भी तरह की एलर्जी की समस्या है, एलर्जिक राइनाइटिस या फिर पोलन एलर्जी वगैरह वगैरह। मौसम परिवर्तन के दौरान सर्दी खांसी और गले की खराश जैसी समस्याएं तो आम हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और कुछ सरल घरेलू उपायों से इनसे काफी हद तक बचा भी जा सकता है। मसलन गुनगुना पानी पीना, तुलसी और अदरक को मिलाकर काढ़े का सेवन, भाप लेना जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और पौष्टिक आहार अपनाना शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक हो सकते हैं। साथ ही मौसम के हिसाब से कपड़े पहनना और इनफ रेस्ट करना भी उतना ही आवश्यक है। याद रखिए, घरेलू नुस्खे सामान्य परेशानियों में राहत तो दे सकते हैं, लेकिन लक्षण गंभीर हो या लंबे समय तक बनी रहे तो चिकित्सक की सलाह अवश्य ले।
1: एक चुटकी नुस्खे।

आज 20 जून है। हर साल इसी दिन को पूरी दुनिया विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाती है। ये दिन उन लाखों लोगों के साहस, संघर्ष और उम्मीद को सलाम करने के लिए मनाया जाता है जिन्हें वॉर, हिंसा या फिर नेचुरल क्लैमिटी के कारण अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सोचिए, एक सुबह आप जागें और आपको पता चले कि अब आपका घर जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है।

आपके अपने ही शहर की गलियां, आपका स्कूल, आपका ऑफिस या फिर कोई भी काम की जगह जो है, आपके पड़ोसी, सब कुछ पीछे छूट रहा है और आप केवल अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक अनजाने सफर पर निकल पड़ते हैं। यही वो कठिन वास्तविकता है जिसका सामना दुनिया भर के करोड़ों शरणार्थी करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक आज दुनिया में करोड़ों लोग जबरन विस्थापन का जीवन जी रहे हैं। इनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल हैं। लेकिन शरणार्थी केवल सहायता पाने वाले लोग नहीं हैं, वे साहस, धैर्य और डिटर्मिनेशन के प्रतीक भी हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वे नए जीवन की शुरुआत करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और समाज में अपना योगदान भी देते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हमें ये याद दिलाता है कि मानवता की कोई सीमा नहीं होती। किसी भी इंसान की पहचान उसकी राष्ट्रीयता, भाषा या धर्म से पहले उसकी इंसानियत से होती है। जब कोई अपना घर खो देता है तब उसे सबसे अधिक जरूरत होती है सहानुभूति, सम्मान और सहयोग की। और हमारा देश भी तो सदियों से अतिथि देवो भव और वसुदैव कुटुंबकम जैसे मूल्यों पर आधारित रही है। यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है। यही भावना हमें दूसरों के दुख को समझने और जरूरतमंदों की सहायता के लिए प्रेरित करती है। आज के दिन हम उन संस्थाओं और स्वयंसेवकों के प्रयासों को भी नमन करते हैं जो शरणार्थियों को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने में निरंतर जुटे रहते हैं। उनके प्रयास बहुत से परिवारों के जीवन में आशा की नई किरण लेकर आते हैं। पता है आपको, कभी कभी किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। एक सेंसिटिव पर्सपेक्टिव, सम्मानजनक व्यवहार और मानवीय सहयोग भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हर व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लें जहां करुणा, सह अस्तित्व और मानवता

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। मैं हूं दीप जानी, आप सभी सुनने वालों के साथ। और देखते ही देखते हमने इस कार्यक्रम में काफी समय एक साथ गुजार लिया, 10:40 और 40 सेकंड्स, घड़ी भी यही बता रही है। तकरीबन 20 मिनट का सफर अब बचा रह गया है और उस सफर को हम तय करेंगे इसी तरह के कुछ बेहतरीन गीतों और बातों के साथ।
1: आज के दिन,
0: आज 20 जून का दिन है, शनिवार का भी दिन है। क्या हुआ था आज के दिन, किस वजह से इतिहास ने याद रखा है या फिर किन वजहों से इतिहास ने याद रखा है आज के दिन को, आइए पन्ने पलटते हैं। और यहां पन्ने पलटने की आवाज भी आ रही है। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कलकत्ते को छीन लिया था।

आज के ही दिन 1819 में एसएस सवाना जहाज जॉर्जिया के सवाना से 29 दिन और 11 घंटे की यात्रा के बाद आयरलैंड के कॉर्क पहुंचा और अटलांटिक महासागर या किसी भी अन्य महासागर को पार करने वाला पहला स्टीमशिप बन गया। 1840 अमेरिकी आविष्कारक सैमुअल मॉर्स को उनके टेलीग्राफ के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ और इस भाषा को हम आज भी मॉर्स कोड के नाम से जानते हैं। 1867 में अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने अलास्का खरीद की घोषणा की थी। आज के ही दिन 1919 की वर्साई संधि, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को अपने देश में शामिल करने की प्रथा समाप्त की थी। आज के ही दिन 1960 में माली और सेनेगल संघ फ्रांस से स्वतंत्र हो गया था। आज के ही दिन 1966 में 43 वर्षीय पायलट शीला स्कॉट ने एक ब्रिटिश महिला द्वारा पहली एकल विश्व यात्रा पूरी की और 34 दिनों की यात्रा के बाद अपने पाइपर कोमांचे विमान में लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर वापस आई। 2018 फीफा वर्ल्ड कप पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मोरक्को के खिलाफ हेडर से गोल करके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यूरोप के सर्वकालीन अग्रणी गोल स्कोरर का रिकॉर्ड कायम किया। 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत अवैध अप्रवासियों के लिए सीमा पर परिवारों को अलग करने की प्रथा समाप्त कर दी गई।

0: क्या आज अपना मना रहे हैं जन्मदिन आप? तो हमारी ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बता दें, आज कौन से लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं या फिर किन लोगों की आज जयंती है? 1939 में भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज रमाकांत देसाई का जन्म हुआ था बंबई में। 1949 में गायक कलाकार लायनेल ऋषी का जन्म हुआ था आज के ही दिन। 1952 में कोलकाता में जन्मे भारतीय कवि और उपन्यासकार विक्रम सेठ। 1958 में पैदा हुई थी भारत की ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, भारत के ओडिशा के मयूरभंज जिले में। और आज अपना जन्मदिन मनाती हैं निकोल किडमन भी, जो एक अमेरिकी अभिनेत्री है, और उनका जन्म 1967 के 20 जून को हुआ था।
1: आज के दिन थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

culture. आइए पता कर लेते हैं कि शहर कोलकाता में हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं। आज एक म्यूजिकल शो है 50 इयर्स ऑफ हरिहरन के नाम से। नजरुल मंच में ये इवेंट शाम के 6 बजे से है और इसके साथ ही साथ ओवर स्मार्ट गिरी बाय आदित्य गुंडेती शहर कोलकाता के क्लब में ये स्टैंड अप कॉमेडी शो है। द आर्ट ऑफ वॉन्डर ये भी आज शाम में एक शो है। इसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी शोज हैं जैसे शाकाहारी अविध स्टैंड अप कॉमेडी शो, बांग्ला कॉमेडी नाइट अनामिका कला संगम में, और इसके साथ ही साथ केसीसी में एक और इवेंट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज 20 जून है तो ऑफ स्टेज श्रेष्ठा एंड पोशिया नाम से एक शो है केसीसी एम्पीथिएटर में 6:30 से। द लैंग्वेज ऑफ लाइंस केसीसी गैलरी स्टोर में ये शो है दिन के 12 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। इसके साथ ही साथ कई सारे और इवेंट्स हैं हमारे शहर के आसपास इर्द गिर्द जिनमें आप शामिल हो सकते हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की बातों को आप तक पहुंचा सके ताकि आप अपनी प्लानिंग कर सकें। नॉर्मली हम दिन के यानी कि उसी दिन के बारे में ही बताते हैं क्योंकि आज क्या हो रहा है यही हमारा विषय होता है और हमारी कोशिश यही रहती है कि इन सारी बातों से आपकी प्लानिंग में थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन आपकी प्लानिंग को मिल जाए हमारी तरफ से, हम जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं उसके जरिए। और देखते ही देखते देखिए 10:55 समय हो रहा है और मुझे भी आगे की प्लानिंग करनी है क्योंकि और भी बहुत सारे प्रोग्राम लाइन अप हैं। 11:10 से मैं रहूंगी आप सभी सुनने वालों के साथ 100.1 FM गोल्ड खरा सुना पर लेकर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और फिलहाल इस कार्यक्रम से मैं देवजानी लेती हूँ इजाज़त। आप सभी सुनने वालों से बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी यानी कि कल सुबह। सुनते रहिए हमारे साथ, बने रहिए। Culture.

0: के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक दौर वो भी था, कितना घायल होता था किसान का स्वाभिमान जब जब वो लेता था पैसे उधार। पर अब वो दौर नहीं। 6 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम किसान सम्मान के 6,000 रुपए किसानों के खातों में डाल रहे हैं। किसानों को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिली। महिला किसानों की भी भागीदारी बढ़ी। देश के 85% से अधिक छोटे और सीमांत किसान लाभार्थी बने। बीज से बाजार तक किसान के साथ हर कदम पीएम मोदी खड़े हैं। इसीलिए पिछले 10 सालों में 20 लाख करोड़ से अधिक रुपयों से MSP पर ऐतिहासिक खरीद हुई। 12 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी दी गई। करीब 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बने और कृषि बजट भी इस साल 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पर पहुंचा। तभी तो आज किसान का साहस और सम्मान बढ़ा है। पीएम किसान के 6 वर्ष, किसानों का उत्कर्ष।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का, 3:06 जहां स्टार किड्स बने टॉक ऑफ द टाउन, जहां कमबैक करे सुपरस्टार और बॉक्स ऑफिस बोले हाउसफुल, रीमेक की चर्चा हो या ओरिजिनल का जादू, ओटीटी की धूम हो या बड़े पर्दे का वादा, अवार्ड्स की रेस हो या वायरल रील्स का शोर, हर खबर में है मसाला, हर बात में है जोर, तो हो जाए तैयार क्योंकि तीन का तड़का तीन नजरों से, तीन अंदाज से बॉलीवुड की गर्मा गर्म कहानी के साथ। कार्यक्रम है आकाशवाणी FM रेनबो पर तीन का तड़का। तीन बजकर 7 मिनट 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का। फिलहाल सुन रहे हैं दिल धड़कने दो से, इस ट्रैक को जावेद अख्तर के बोल को शंकर ईशान ब्लॉय ने संगीतबद्ध किया, प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर की आवाज।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।
1: आकाशवाणी FM रेनबो पर कार्यक्रम है तीन का तड़का, 3:11 और 22 सेकंड। आंखों के गुस्ताखियां का ट्रेलर रोमांस की नई खुशबू ने खींचा ध्यान। जी हाँ दोस्तों, जून के इस सप्ताह रोमांटिक फिल्मों के चाहने वालों के लिए एक दिलचस्प हलचल देखने को मिली। आंखों की गुस्ताखियां का ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी सिनेमेटोग्राफी और संगीत की चर्चा तेज हो गई है। कई दर्शकों ने कहा कि ट्रेलर में पुराने दौर की रोमांटिक फिल्मों वाली सादगी महसूस हुई। फिल्मी गलियारों में ये भी चर्चा रही कि मेकर्स जानबूझकर इसे सॉफ्ट रोमांस के रूप में पेश कर रहे हैं, जो आज के तेज रफ्तार सिनेमा से थोड़ा अलग जरूर है। जावेद अख्तर का बड़ा बयान, कमजोर लेखन से फिल्में नहीं चलेगी। जी हाँ, जावेद अख्तर साहब ने ये कहा कि गीतकार और लेखक जावेद अख्तर जून के दूसरे सप्ताह से ही ये बात, उनकी जो बयान है ये चर्चे में है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि दर्शक अब सिर्फ सितारों के नाम पर फिल्में नहीं देखते, बल्कि मजबूत कहानी और लेखन चाहते हैं। सोशल मीडिया पर उनके बयान को खूब साझा किया जा रहा है। कई लोगों ने इसे बॉलीवुड के लिए वेकअप कॉल कहा है, जबकि फिल्म प्रीमियर ने माना कि अब की पटकथा जो है अच्छी पटकथा लंबे समय तक याद रखी जाती है। यानी कि जावेद साहब जो कह रहे हैं वो सही है। वेलकम टू द जंगल के सेट से सामने आई नई झलक, फैंस में उठा उत्साह। कॉमेडी प्रेमियों के लिए है एक खुशखबरी। हम बता सकते हैं कि एक मजेदार खबर यह है कि जून के दूसरे सप्ताह से और तीसरे सप्ताह तक वेलकम टू द जंगल के सेट से कुछ नई तस्वीरें और बिहाइंड द सीन्स झलकियां जो है वायरल हुई। मल्टी स्टारर फिल्म को लेकर पहले से ही काफी उत्साह, लेकिन इन कई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर चर्चा और बढ़ा दी है। फैंस मजाक में लिख रहे हैं, इतने कलाकार हैं कि कॉमेडी ओवरलोड तय है, हो सकता है फिल्म को अगले बड़े फैमिली एंटरटेनर के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे। सन ऑफ सरदार 2 के बारे में कुछ बातें सामने आई हैं, लेकिन उससे पहले जरा सी दोस्ती कर ले अरिजीत सिंह की आवाज के साथ हैप्पी भाग जाएगी, मुदस्सर अजीज ने लिखा और सोहेल सेन ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम है तीन का तड़का।
2: जरा सी
1: आपके साथ हूं मैं संचिता।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात।

0: प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
2: 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का, 3:21 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। जून के इस हफ्ते में धड़क 2 को लेकर फिल्मी गलियारों में नई चर्चा शुरू हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की सामाजिक विषय वस्तु और कुछ संवेदनशील दृश्य को लेकर सेंसर रिव्यू पर बातचीत तेज हो रही है। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की ये फिल्म सिर्फ प्रेम कहानी नहीं बल्कि सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को भी छूती बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं, अगर कहानी दमदार हुई तो ये सिर्फ रोमांस नहीं डिस्कशन पॉइंट बन सकती है। आगे की बात करें, बॉलीवुड के शुक्रवार पर OTT का असर हुआ, बदल रही है रिलीज की कहानियां। और आखिर में ये दिलचस्प इंडस्ट्री अपडेट ये है कि जून के इस सप्ताह में ट्रेड एनालिसिस ने चर्चा की कि अब फ्राइडे रिलीजेस पर OTT प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव साफ दिखने लगा है। कई दर्शक थिएटर्स जो हैं, दर्शक थिएटर्स जाने से पहले रिव्यूज और सोशल मीडिया रिएक्शंस का इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स भी डिजिटल प्रमोशन और अर्ली बज पर पहले से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बॉलीवुड गलियारों में सवाल गूंज रहा है, क्या अब टिकट खिड़की का फैसला मोबाइल स्क्रीन करेगी? सन ऑफ सरदार 2 की बात हो रही थी, बड़ी हलचल है, कॉमेडी एक्शन की वापसी हुई है बॉलीवुड में। अजय देवगन अभिनीत सन ऑफ सरदार 2 जून के दूसरे सप्ताह में रिलीज प्लानिंग और पोस्ट प्रोडक्शन अपडेट्स को लेकर चर्चे में है। ट्रेड मेकर्स और सर्कल्स में खबरें यही है कि मेकर्स फिल्म को बड़े फेस्टिव ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया है और रिलीज किया है। सोशल मीडिया पर कई फैंस ने पहली फिल्म के डायलॉग्स और कॉमिक सीन्स याद करते हुए लिख रहे हैं, अगर मस्ती लौटी तो मजा आ गया। आगे बढ़ेंगे अमन त्रिखा और हिमेश रेशमिया की है आवाज सन ऑफ सरदार। जी हाँ, शबीर अहमद ने लिखा इस गीत के बोल को और हिमेश रेशमिया ने ही इसे संगीतबद्ध किया। 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का संचिता के साथ। 3:23 25 सेकेंड।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो

0: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: सरकारी उद्यम और तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS के बारे में। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य देश के सभी छात्रों और शोधकर्ताओं को महंगे अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं यानी कि रिसर्च जर्नल्स और अकादमिक लेखों तक मुफ्त और आसान पहुंच प्रदान करना, शिक्षा और शोध सामग्री को लोकतांत्रिक बनाना ताकि टीयर टू और टीयर थ्री शहरों के छात्रों को भी उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन मिल सके। इसके जरिए

लगभग 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक उच्च प्रभाव वाली ई पत्रिकाएं और जर्नल उपलब्ध कराए जा सके। भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 6,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना से देश के 300 से अधिक उच्च शिक्षण अनुसंधान संस्थानों के लगभग 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और वैज्ञानिक लाभान्वित हो सकते हैं। पहले विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों को अलग अलग पत्रिकाओं के लिए भारी सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती थी। इसके कारण कई बार आर्थिक तंगी के चलते छात्र और शोध धात्री महत्वपूर्ण और महंगी रिसर्च सामग्री तक नहीं पहुंच पाते थे। इस योजना के लागू होने से सभी शोध पत्र जो है एक ही जगह और बिना किसी शुल्क के उपलब्ध हो गए हैं। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसका समन्वय और कार्यान्वयन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क INFLIBNET द्वारा किया जा रहा है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के अंतर्गत आता है। अधिक जानकारी और संसाधनों तक पहुंच के लिए ONOS आधिकारिक वेबसाइट भी जारी है। हमेशा से ही प्राचीन ज्ञान और समृद्ध परंपरा की भूमिका भारत नवाचार और खोज का केंद्र रहा है। गणित और खगोल विज्ञान में अग्रगणी प्रगति से लेकर विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान तक देश की बौद्धिक उपलब्धियां की विरासत जो है अद्वितीय है। 15 अगस्त 2022 को इसीलिए लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश को इस गौरवशाली विरासत और भारत के भविष्य को आकार देने के अनुसंधान और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाई। राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विशेष रूप से अमृतकाल के दौरान अनुसंधान और विकास क्षमताओं को पोषित करने के महत्व पर जोर दिया था। जय अनुसंधान के प्रेरक नारे के साथ नवाचार पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया गया। एक जीवंत अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम के लिए ये आह्वान राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020-2020 में उल्लेखित लक्ष्यों के अनुरूप है, जो अनुसंधान को शैक्षणिक या शैक्षिक उपकृतता और राष्ट्रीय प्रगति के रूप में पहचानता है। नीति एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति विकसित करने का प्रयास करती है, जो एक केवल शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाती है बल्कि वैश्विक मंच पर भारत के विकास को भी गति देती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को इस दृष्टिकोण के अनुरूप वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दे दी थी। इस पहल का उद्देश्य देश के सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सभी छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों और पत्रिकाओं और लेखों तक पहुंच प्रदान करने, ज्ञान की बाधाओं को तोड़ना। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि भारत के शैक्षणिक और अनुसंधान समुदाय सर्वोत्तम वैश्विक संशोधनों से लैस हो, नवाचार को बढ़ावा दे और विभिन्न विषयों को अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की भारत की जो महत्वाकांक्षा है कि आधारशिला है, और ये पहल विकासशील भारत @2047 विजन का एक प्रमुख घटक भी है। ये रोडमैप अत्याधुनिक अनुसंधान तकनीकी उन्नति और आत्मनिर्भर प्रगति द्वारा संचालित एक अग्रगणी वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उभरने की कल्पना करता है।

0: ऐसी पहलों के माध्यम से भारत ज्ञान की अपनी समृद्धि विरासत का निर्माण करने की तैयारी कर रहा है, जिससे वो वैश्विक नवाचार और खोज में सबसे आगे खड़ा हो सकता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना अवलोकन, ये योजना का उद्देश्य सभी पात्र छात्र शिक्षक शोधकर्ता वैज्ञानिक उठा सकते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक विद्वत्तापूर्ण पत्रिकाओं तक पहुंच, विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित चिकित्सा सामाजिक विज्ञान वित्त और लेखा आदि जैसे विषयों के लगभग 1.8 करोड़ छात्रों शिक्षकों और शोधकर्ताओं को टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के संस्थानों के लिए अनुसंधान तक समावेशी पहुंच जिसमें ज्ञान तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। स्कॉलर नॉलेज तक पहुंच होना भी जरूरी है, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। ये जो योजना है विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले विद्वानों की पत्रिकाओं और प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करती है। इसका उद्देश्य छात्रों शिक्षकों और शोधकर्ताओं की शोध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ज्ञान तक पहुंच को सुगम बनाना है, विविध संस्थानों का समावेश करना है। ये योजना सुनिश्चित करती है कि संस्थानों को चाहे वे किसी भी भौगोलिक स्थिति में हो, शहरी केंद्र में या फिर दूरदराज के क्षेत्र में, विश्व स्तरीय अनुसंधान संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो। ये देश में मुख्य और अंतः विषय अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। पूरी सदस्यता प्रक्रिया एनफ्लेम बॉनेट या सूचना या पुस्तकालय नेटवर्क की अगर बात करें, केंद्रीय रूप से समन्वित की जाएगी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के तहत एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। पत्रिकाओं तक डिजिटल पहुंच के वितरण का प्रबंध किया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित हो। पत्रिकाओं को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सेस किया जाएगा, जिससे सभी उपयोगकर्ता के लिए सुविधा और आसानी सुनिश्चित होगी। ये दृष्टिकोण जो है प्रशासनिक परेशानियों को कम करना, मांग पर सभी के लिए पहुंच उपलब्ध कराता है। पीएम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के लिए कुल 6,000 करोड़ आवंटित किए जा चुके हैं, जो 3 वर्ष यानी कि 2025, 26 और 27 तक कवर करते हैं। ये फंडिंग 3 वर्षों की अवधि में सभी भाग लेने वाले संस्थानों के सदस्यता शुल्क को कवर करेगी। इसके अलावा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लाभार्थी लेखकों को चयनित अच्छी गुणवत्ता वाले ओपन एक्सेस पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय पोषण की सहायता प्रदान करेगी। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का आपके साथ हूं मैं संचिता। 3:46 और 26 सेकंड अरिजीत सिंह की आवाज। भुज है फिल्म का नाम। मनोज मुंतशीर के बोल को ऑर्को ने संगीतबद्ध किया।

के विभाजन संग्रहालय में 1947 की एक प्रेम कहानी आज भी जीवंत है। इसी पर आधारित है मैं वापस आऊंगा ये फिल्म। सत्ता ने सिर्फ एक देश को ही नहीं बांटा, बल्कि अनगिनत दिलों को चकनाचूर कर दिया। और इसी दर्द से मैं वापस आऊंगा की कहानी का जन्म हुआ। लेकिन इस काल्पनिक कहानी के पीछे एक सच्ची प्रेम कहानी छिपी है, जिसे इतिहास लगभग भूल चुका है। प्रीतम कौर और भगवान सिंह दो ऐसे युवा थे जो विभाजन की अराजकता के से अलग हो गए और उनके फिर से एक दूसरे को पाने की लगभग कोई उम्मीद नहीं बची थी। प्रीतम 22 साल की थी और गुजरांवाला की रहने वाली, हाल ही में सगाई हुई और भगवान सिंह के साथ जीवन बिताने का सपना देख रही थी। प्रीतम को दंगों से बचने के लिए अचानक अमृतसर जाना पड़ा। सगाई के बाद उसने भगवान सिंह को सिर्फ एक बार ही देखा था और उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगी। भगवान सिंह की दुनिया पहले ही बिखर चुकी थी। दंगों में उन्होंने अपने 3 भाइयों को खो दिया था। शोक ने उन्हें सांस लेने तक का समय नहीं दिया, बस किसी तरह जीवित रहने को मजबूर किया और हजारों अन्य लोगों की तरह अकेले टूटे हुए दिल के साथ अमृतसर पहुंचे। खंडरों में जीवन का अर्थ तलाशने लगे। दिन हफ्तों के बाद बदलने लगे। उम्मीदें धीरे धीरे ऐसी विलासिता लगने लगी जैसे वे वहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इस असहनीय विचार के साथ जीना सीख लिया और शायद वे फिर कभी एक दूसरे से मिल ना पाए। लेकिन भाग्य अभी भी देख ही रहा था। एक आम दिन शरणार्थी शिविर में प्रीतम राशन की लाइन में खड़ा इंतजार कर रहा था और फिर पीछे से एक कांपती हुई जानी पहचानी लगभग अवास्तविक सी आवाज आई, क्या तुम प्रीतम हो? वह मुड़ी, राशन के लाइन में इंतजार करती हुई प्रीतम मुड़ी और दुनिया थम गई। वो भगवान सिंह थे। जी हाँ, ये कहानी है मैं वापस आऊंगा। लोग बहुत ही चाह से इसे देख रहे हैं और ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसंझ, विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ की आवाज के साथ हम आगे बढ़ेंगे एक दूसरे ही फिल्म के गीत के साथ। बॉर्डर 2 है फिल्म का नाम। जावेद अख्तर के बोल को अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया। घर कब आओगे 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम है 3 का तड़का। 3:53 26 सेकेंड आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

रणबीर कपूर बने टाइम्स 100 की सूची में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय अभिनेता बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने जून 2026 में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। प्रतिष्ठित टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2026 की सूची में उन्होंने शामिल कर लिया अपना नाम। इस वर्ष इस सम्मान को पाने वाले इकलौते भारतीय अभिनेता बने। फिल्म जगत में उनके लगातार दमदार अभिनय, विविध भूमिकाओं के चयन और वैश्विक स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ये सम्मान उन्हें दिया गया। फिल्म समीक्षकों और प्रशंसकों ने इसे भारतीय सिनेमा के लिए एक गर्व का क्षण बताया। सोशल मीडिया पर भी रणबीर को बधाइयां का सिलसिला जो है लगातार जारी है और ये खबर पूरे सप्ताह चर्चे में रही। इसी के साथ इजाजत दे संचिता को और आखिरी गीत इस कार्यक्रम का, फिल्म का नाम सैयारा, उसी का टाइटल ट्रैक आप सुनेंगे और मिलते हैं आपसे फिर एफएम गोल पर लेकर कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स। फहीम अब्दुल्ला की आवाज, इरशाद कामिल के बोल को तनिष बागची और आसलान निजामी ने संगीतबद्ध किया। साथ रहिए और अगले कार्यक्रम के साथ भी रहिए और सुनते रहिए इस गीत को।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: जाने अनजाने

हर सुर में छिपी एक कहानी, हर धुन की अपनी है जिंदगानी। जो सुना आपने बरसों से गुनगुना कर, आज मिलेंगे उसके किस्से मुस्कुरा कर। गीतों के पीछे के अनजाने राज, संगीत के सुनहरे दिलकश अंदाज। तो आइए यादों की राह थामे हर नगमे का नया सफर पहचानते हैं, जाने अनजाने, जहां हर गीत सुनाए अपनी अनकही सी दास्ता। और इस दास्ता को बयां करने आपके साथ मैं हूं संचिता। 7:10:48। शुरू करते हैं 90s से। 80s और 90s के कुछ बेहतरीन एवरग्रीन नगमों को पिटारे में लेकर करते हैं सफर की शुरुआत। साजन का ये गीत अनुराधा पौडवाल के साथ यादगार एकल गीतों में गिना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि संगीतकार नदीम श्रवण जो है चाहते थे कि इस गीत में शब्दों से अधिक भावनाएं सुनाई दे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस गीत में शब्दों से अधिक भावनाएं ही सुनाई दी, इसलिए रिकॉर्डिंग के दौरान अनुराधा पौडवाल से कई बार अलग अलग अंदाज में गायन करवाया गया, जिसके बाद अंतिम जो संस्करण था उसे चुना गया। गीतकार समीर ने प्रेम की

गहराई को अत्यंत सरल शब्दों में व्यक्त किया, जिससे ये हर उम्र के श्रोताओं का प्रिय बन गया। फिल्म में माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए इस गीत में उनके भावपूर्ण अभिनय को भी नई पहचान दिलाई और आज भी ये रेडियो पर सबसे अधिक बजाए जाने वाले गीतों में से एक जरूर है और एक जमाने में हमेशा इसी को लोग सुनते थे। कौन सा गीत? वही साजन फिल्म से समीर के बोल को नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया, अनुराधा पौडवाल की जादुई आवाज, और जिस पर फिल्माया गया उसे खास इस फिल्म को, इस फिल्म में अभिनय करने के लिए, इस गीत को पिक्चराइज करने के लिए, इस मूड को पेश करने के लिए पर्दे पर खास कुछ कराया गया था। तो चलिए गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम साजन, कार्यक्रम है जाने अनजाने। 7:12, 55 सेकंड आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

0: आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक। जाने अनजाने
1: रेनबो पर कार्यक्रम है जाने अनजाने। 7:17 और 46 सेकंड आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे से। वो गीत आशिकी का आज भी प्रेम गीतों की सूची में सबसे लोकप्रिय गीतों में गिना जाता है। संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण ने इस धुन को बेहद सरल लेकिन दिल को छू लेने वाली शैली में तैयार किया ताकि श्रोता पहली बार में ही इससे गुनगुनाने लगे। गीतकार समीर ने इसके बोल सहज हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा में लिखे जिससे ये हर वर्ग के श्रोता तक पहुंचे। बात करते हैं कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल, 90s का वो छाया हुआ आवाज, जी हाँ वो सिंगिंग जोड़ी मधुर आवाज के मालिक, अमर बना दिया इस गीत को। इस गीत की अपार सफलता ने आशिकी के संगीत एल्बम को उस दौर के सबसे अधिक बिकने वाले हिंदी फिल्म संगीत एल्बमों में शामिल कर दिया। कुमार शानू के करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया फिल्म आशिकी। रानी मलिक के इस लिखे हुए गीत को नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया, आवाज वही अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की। आकाशवाणी FM रेनबो पर कार्यक्रम है जाने अनजाने।

धीरे धीरे से दिल को चुराना। ये आइकॉनिक गीत आप सुन रहे हैं आशिक की फिल्म से। ...1992 की मशहूर बॉलीवुड फिल्म जो जीता वही सिकंदर, एक सुपरहिट मोटिवेशनल और मस्ती भरा गीत। इस प्रतिष्ठित गाने को जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया और इसके बोल मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखे। इसके गायन उदित नारायण, साधना सरगम और जतिन ललित स्वयं ने अपनी आवाज दी। वो सिकंदर एक कंपटीशन का भाव। स्क्रीन पर आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, ममिक सिंह और पूजा बेदी। फिल्म में गाना तब आता है जब मॉडल कॉलेज के रईस जादे राज और उसके दोस्त अपनी मनमानी करते हैं, आम छात्रों को नीचा दिखाते हैं। ये गीत उन कॉलेज के पजामा छाप दोस्तों के आत्मविश्वास, उनकी दोस्ती और चुनौतियों का डटकर सामना करने के जज्बे को दर्शाता है। और इसके बोल को इस तरह से गाया साधना सरगम और उदित नारायण ने कि वाकई ही लगता है कि किसी ने किसी को टक्कर दिया। कॉलेज सॉन्ग की अगर बात करें तो एक जमाने में ये अव्वल हुआ करता था। सुनते हैं इसी गीत को। कार्यक्रम है जाने अनजाने। 7:26 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: जाने अनजाने आकाशवाणी एफएम रेनबो पर 7:32 आप सुन रहे कार्यक्रम जाने अनजाने छायालोक के अंतर्गत। इमेजिन कीजिए एक बहुत ही खूबसूरत वादी, संगीतकार एआर रहमान को पूरी तरह से ये छूट है कि भारत में नई पहचान बनाने की, और उन्होंने बनाई। मूल रूप से तमिल में बनी इस फिल्म के गीत का हिंदी रूपांतरण भी उतना ही लोकप्रिय बना जितना कि ये तमिल में था। इस गीत के रिकॉर्डिंग में आधुनिक डिजिटल तकनीक और प्राकृतिक ध्वनियों का ऐसा संयोजन किया गया जो उस समय हिंदी फिल्म संगीत में बहुत कम सुनाई देता था। एसपी बालासुब्रमण्यम, बालू साहब की आवाज, केएस चित्रा की आवाज एक साथ अलौकिक मधुरता बिखेरती हुई। कश्मीर की मनमोहक वादियों में फिल्माया गया ये गीत आज भी प्रकृति और प्रेम के सुंदर मेल का एक प्रतीक माना जाता है। कार्यक्रम जाने अनजाने, फिल्म का नाम रोजा, पीके मिश्रा के शब्दों को एआर रहमान ने संगीतबद्ध किया। 7:34 आप जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

इसे गीत कहूं तो कम होगा, है एक एहसास। कार्यक्रम जाने अनजाने, छायालोक के अंतर्गत कार्यक्रम जाने अनजाने, 7:39 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। है एक कलाकार जिसने अपनी शुरुआत तो की 1973 में, एक बाल कलाकार के रूप में, यादों की बारात से 1973, फिर 74 में मधोश, फिर एकाएक मंजिल मंजिल 1988 में आई एक फिल्म जिसने इन्होंने राज सिंह का किरदार निभाया और तहलका मचा दिया, फिर एकाएक राग, लव लव लव, अव्वल नंबर, तुम मेरे हो से लेकर जवानी जिंदाबाद, दिल है कि मानता नहीं, जो जीता वही सिकंदर, परंपरा हम है राही प्यार के, रंगीला बाजी आतंकी आतंक, इश्क किया ऐसे राजा अहलावत के नाम से, और फिर सिद्धू यानी कि सिद्धार्थ बने गुलाम में, सर फरोशी ऐसी छाई अजय सिंह राठौड़ के सर पर, किशन प्यारे बने मेला में, आकाश मल्होत्रा दिल चाहता है का, दलजीत डीजे सिंह बने रंग दे बसंती में, गिनती खत्म ही नहीं होती, क्या करे दोस्तों। जी हां, 1988 की फिल्म कयामत से कयामत तक, आमिर खान और जूही चावला की पहली बड़ी सुपरहिट फिल्म में से एक, सबसे लोकप्रिय प्रेम गीत बना डाला। इंटरेस्टिंग है संगीतकार आनंद मिलन की जर्नी। आनंद मिलन ने इस धुन को युवाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए तैयार किया था, जबकि गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी ने इसके बोलों में सादगी और आत्मीयता का सुंदर एक संतुलन रखा। उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाज ने गीत को अमर बना दिया। इस गीत की सफलता ने उदित नारायण को हिंदी फिल्म संगीत के अग्रगणी पार्श्व गायकों में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी ये गीत जब भी रेडियो पर आप सुनते हैं, संगीत कार्यक्रमों में आप सुनते हैं, प्रेम गीतों की विशेष प्रस्तुतियों का एक जैसे स्थायी हिस्सा बन चुका है। फिल्म कयामत से

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक जाने अनजाने।
1: रेनबो पर कार्यक्रम है जाने अनजाने, 7:50 और 34 सेकंड। नाइन्टीज के दशक के सबसे लोकप्रिय अगर मोटिवेटिंग कोई गाना है, कोई इंस्पायरिंग गीत है, तो उसी उन्हीं गीतों में से ये भी गिना जाता है। इसके धुन पर पश्चिमी संगीत का हल्का सा प्रभाव है, लेकिन संगीतकार राजेश रोशन ने इसे भारतीय श्रोताओं की पसंद के अनुरूप बेहद मधुर एक का रूप दिया। कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज में रिकॉर्ड हुआ ये गीत उनकी सबसे यादगार युगल प्रस्तुतियों में एक माना जाता है। गीतकार इंदीवर साहब ने प्रेम, विश्वास और साथ निभाने की भावना को बहुत ही सरल शब्दों में पेश किया। कैसेट युग की बात करें तो यह गाना उसी युग में रिलीज किया गया था। इतनी लोकप्रिय हुआ कि वर्षों तक श्रोताओं की जो फरमाइशी लिस्ट है रेडियो पर, लगातार इसे शामिल किया गया। कुमार शानू, साधना सरगम की युगल आवाज, इंदीवर और पयाम साहिदी के बोल को राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम जुर्म। 7:52 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम है जाने अनजाने, संचिता के साथ।

हर सुर में छिपी है एक कहानी, हर धुन में अपनी एक जिंदगानी, जो सुना आपने बरसों से गुनगुना कर। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम जाने अनजाने के साथ 8:02।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जाने अनजाने
2: FM रेनबो पर कार्यक्रम है जाने अनजाने। वापस आते हैं और जुड़ते हैं इसी कार्यक्रम के साथ 8:04:41। मैं हूं आपके साथ संचिता। 1999 की एक फिल्म अपनी मधुर धुन और भव्य फिल्मांकन के कारण आज भी श्रोताओं के दिल में बसा हुआ है। बहुत कम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि संगीतकार इस्माइल दरबार ने इस धुन को तैयार करने से पहले गुजराती लोक संगीत की कुछ पारंपरिक धुनों का अध्ययन किया था ताकि गीत में भारतीय मिट्टी की सुगंध बनी रहे। उदित नारायण और अलका याग्निक को जब इस गीत को गाने के लिए कहा गया तो ये भी बताया गया कि भावपूर्ण ढंग से उनके आवाज में मिट्टी की वो खुशबू होनी जरूरी है। राजस्थान के भव्य महलों और पारंपरिक वेशभूषा में फिल्माया गया ये गीत निर्देशक संजय लीला बंसाली की भव्य प्रस्तुति शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज, महबूब के बोल को इस्माइल दरबार ने संगीत से सींचा। फिल्म का नाम हम दिल दे चुके सनम।

0: 8:11 और 52 सेकंड 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम जाने अनजाने। और एक जरूरी नारंगी चेतावनी है जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों के लिए। मध्यम गरज और बिजली के साथ तेज बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं की संभावना है, जिसे आज यानी कि 20 जून 2026 6 बजे से शुरू होकर अगले 2-3 घंटों के दौरान इन दो जिलों के कुछ हिस्सों पर असर डाल सकती है।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
0: छायालोक के अंतर्गत कार्यक्रम जाने अनजाने। आपके साथ हूं मैं संचिता और 8:13। 1991 की फिल्म का शीर्षक गीत टाइटल सॉन्ग उस दौर के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक गीतों में शामिल हुआ। इस फिल्म की कहानी हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म इट हैपन वन नाइट से प्रेरित थी, लेकिन संगीत पूरी तरह भारतीय शैली में तैयार किया गया। संगीतकार नदीम श्रवण ने धुन को अत्यंत सरल और भावपूर्ण रखा, जिससे ये हर उम्र के श्रोताओं की जुबां पर चर जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज ने गीत में अलग ही मिठास घोल दी। ये गीत आज भी प्रेम और सादगी का सुंदर प्रतीक माना जाता है। रेडियो पर अक्सर सुनाई देती थी 90s के दौर में। फैज अनवर का लिखे हुए इस गीत को नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम दिल है कि मानता नहीं।

दिल है कि मानता नहीं इसे लेकर सिर्फ दिल तक 1990s की कहानियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम। 90s और 80s के जो मोस्ट पॉपुलर गीतों की अगर बात करें तो ये गीत भी उसी तालिका में शामिल है। आमिर खान और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया ये गीत अपने समय का बेहद लोकप्रिय रोमांटिक युगल गीत है। आनंद मिलन ने इसकी धुन में भारतीय और पश्चिमी वाद्य यंत्रों का एक संतुलित प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, जिससे गीत युवा श्रोताओं के बीच तुरंत लोकप्रिय हो गया। अनुराधा पौडवाल के साथ इस बार सुरेश वाडकर की सुरीली आवाज ने गीत को विशेष ऊंचाई दी। फिल्म दिल की अपार सफलता के बाद इसके गीत की जो कैसेट रिकॉर्ड बिक्री भी उस समय के सबसे सफल संगीत एल्बमों में गिनी गई, जिसने संगीत उद्योग में एक नए रिकॉर्ड बना दिए। अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज, समीर के बोल को आनंद मिलन ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम जाने अनजाने में इस ट्रैक को सुनेंगे फिल्म दिल से।

8:27 आकाशवाणी एफएम रेनबो पर कार्यक्रम जाने अनजाने। फिल्म दिल के इस मोस्ट पॉपुलर ट्रैक के बाद 1997 की बात करते हैं। कुमार शानू के करियर के सबसे मधुर गीतों में गिना जाता है इस गीत को। संगीतकार नदीम श्रवण फिर से इस धुन को बेहद कम वाद्य यंत्रों के साथ उन्होंने तैयार किया ताकि गीत के बोल ज्यादा उभर कर आए, भावनाएं प्रमुखता के साथ उभर कर सामने आई। आनंद बख्शी ने प्रेम की मासूमियत को अत्यंत सहज शब्दों में व्यक्त भी किया और फिल्म के पर्दे पर अगर हो शाहरुख खान और साथ में न्यू डेब्यू महिमा चौधरी, जिसने इस जोड़ी ने इस गीत को इन दोनों कलाकारों ने उस लोकप्रियता के मकाम पर पहुंचाया कि आज भी ये गीत 90s के दशक के सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले प्रेम गीतों में शुमार किया जाता है और रेडियो कार्यक्रमों में स्थाई पसंद किया जाता था। फिल्म का नाम परदेस, कुमार शानू की जादुई आवाज, आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम है जाने अनजाने। 8:29 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, 8:35 और 13 सेकंड। आगे बढ़ेंगे चुप चुप के तो नहीं, लेकिन हाँ बारिश की टिपटिपाहट के साथ। ये गीत अपनी धुन गायकी फिल्मांकन के लिए कारण हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित गीतों में शामिल है, खासकर रेन सॉन्ग के रूप में। साथ ही साथ इसे हम रोमांटिक गीत भी कह सकते हैं। एक कम ज्ञात तथ्य ये है कि संगीतकार बीजू शाह ने इस गीत में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बीट्स और भारतीय ताल का ऐसा संगम किया कि उस बिल्कुल एक नया माना जाता है उस समय पर। 1994 की बात है। उदित नारायण और अलका याग्निक की दमदार गायकी ने इसे और प्रभावशाली बना दिया। बारिश में फिल्माए गए इस गीत की शूटिंग कई दिनों तक चली, क्योंकि मौसम और प्रकाश की परिस्थितियों के अनुसार दृश्य को बार बार फिल्माया गया जब तक कि परफेक्ट शॉट न मिल जाए। वर्षों बाद भी ये गीत उतना ही लोकप्रिय बन गया जितना कि पहले था। फिल्म का नाम मोहरा। जी हाँ, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज। कार्यक्रम है जाने अनजाने। 8:36 आपके साथ मैं हूं संचिता। यही वो गीत है जिसने रवीना टंडन को टिप टिप गर्ल बना दिया।

जाने अनजाने। आठ बजकर 42 मिनट और 52 सेकंड 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम है जाने अनजाने। 1994 के बाद 1993 एक साल पहले एक फिल्म आई थी हम है राही प्यार के। आज भी 90s के दशक के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक गीतों में गिना जाता है और संगीतकार नदीम श्रवण का जादू फिर से चला इस गीत में। चाहते थे संगीतकार की गीत में भारतीय लोक संगीत की झलक महसूस हो, इसलिए उनकी धुन में पारंपरिक वाद्य यंत्र और संतुलित प्रयोग किया गया। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज ने इस गीत में ऐसा मिठास घोला कि विवाह और पारिवारिक समारोह की पहली पसंद हुआ करती थी ये गीत। समीर ने सरल शब्दों में प्रेम और संकोच की भावनाओं को व्यक्त किया। फिल्म की सफलता के साथ साथ इस गीत ने भी संगीत चार्ट पर लंबे समय तक अपना दबदबा जो है बनाए रखा। अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज, फिल्म हम है राही प्यार के। आठ बजकर 44 मिनट आप इस कार्यक्रम में है संचिता के साथ।

इस गीत को आप सुन रहे हैं फिल्म हम है राही प्यार के से। 90s का दशक यानी कि किशोरदा के जाने के बाद जिन लोगों ने मोर्चा संभाली थी वो है उदित नारायण, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, कुमार शानू, सुरेश वाडकर जैसे लेजेंडरी सिंगर्स ने।

1997 की बात करते हैं। एक फिल्म आई विरासत, जिसके सारे गीत लगभग बहुत ही लोकप्रिय हुए। भारतीय लोक संगीत की मिठास से एक बार फिर से भरपूर पाया गया। संगीतकार अनु मलिक ने इस धुन को तैयार करने में पहले गुजरात और राजस्थान के लोक संगीत की कई पारंपरिक धुनों का अध्ययन किया। कुमार शानू और के एस चित्रा की मधुर आवाज ने गीत में ग्रामीण संस्कृति की आत्मीयता को जीवंत कर दिया। निर्देशक प्रियदर्शन चाहते थे कि गीत केवल मनोरंजन ना होकर भारतीय गांवों की जो सिंप्लिसिटी है, सादगी है और संस्कृति को भी इस गीत के माध्यम से लोग समझें। यही कारण है कि इसका फिल्मांकन प्राकृतिक परिवेश और पारंपरिक वेशभूषा के साथ किया गया, जिसने गीत की जो एक नेचुरल सुंदरता है उसे और भी बढ़ा दिया। जावेद अख्तर के बोल को अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया, कुमार शानू और चित्रा की आवाज। फिल्म का नाम विरासत। 8:51 कार्यक्रम जाने अनजाने।

सुरों की महफिल अब यहीं थमती है, यादों की सरगम दिल में बसती है, जो जाना जो अनजाना था आज तक बन गया वो अपना हर मधुर झलक। फिर मिलेंगे गीतों के नए अफसानों के साथ, लेकर यादों संगीत और मुस्कानों के सौगात लिए। तब तक गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बैठी आपके साथ संचिता, सुनते रहिए इस आखिरी गीत को महालक्ष्मी अय्यर और उदित नारायण की आवाज, गुलजार साहब के बोल को एआर रहमान ने संगीत से सींचा। फिल्म का नाम दिल से। इसी के साथ इजाजत दीजिए और अगले कार्यक्रम के साथ रहिए।

0: सीने क्विज।
1: अगर तुमने माँ के पेट में ही सुन लिया होता कि हमारा नाम राजा शमशेर सिंह उर्फ शमशेरा है तो शायद तुम पैदा होने से ही इनकार कर देते।
2: छोबिते सुन लेन बॉलीवुड विख्यात विलेन अमरीश पुरी कला बोलून देखी कौन छवि संलाप।
0: চটপট উত্তরটা পাঠিয়ে দিন নিজের নাম আর লোকেশন সমেত হোয়াটসঅ্যাপ বা এসএমএস করে 9900।

कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।